0: प्रभुमा बीमा गरौ, निर्धक्क रहौ। प्रभु इन्स्योरेन्स, दिनकुनी काठमाडौँ। टोल फ्री नम्बर 1-66-00-100-66।
1: आरबी कम्प्लेक्स,
2: आरबी कम्प्लेक्स
1: गुणस्तरीय ब्रान्डेड विदेशी सामानको लागि। आरबी कम्प्लेक्स
2: सुपथ मूल्यमा
1: स्पोर्ट्स वेयर, क्याजुअल वेयर, पार्टी वेयर, गिफ्ट आइटम्स, होम अप्लायन्सेस र अरु थुप्रै सामानका लागि। आरबी कम्प्लेक्स
2: पर्याप्त पार्किङ र उचित सुरक्षा व्यवस्था सहितको 300 भन्दा बढी पसल भएको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न शपिङ कम्प्लेक्स।
1: आरबी कम्प्लेक्स, पाको न्यू रोड, अ कम्प्लिट सुपरमार्केट।

0: आरबी कॉम्प्लेक्स
1: आरबी कॉम्प्लेक्स
0: गुणस्तरीय ब्रांडेड विदेशी सामान को लागी आरबी कॉम्प्लेक्स
1: सुपथ मूल्य में
0: स्पोर्ट्स वेयर कैजुअल वेयर पार्टी वेयर गिफ्ट आइटम्स होम अप्लायंसेस थुप्रै सामान का लागी आरबी कॉम्प्लेक्स
1: पर्याप्त पार्किंग र उचित सुरक्षा व्यवस्था सहित को 300 भन्दा बढी पसल भएको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न शपिंग कम्प्लेक्स
0: आरबी कॉम्प्लेक्स पाको न्यू रोड अ कम्प्लीट सुपरमार्केट।

अंतिम और मुख्य समाचार एक पटक फिरी। प्रधान सेनापति सिग्देल चीन भ्रमण में 13 बेजिंग सैंक्शन फोरम में सहभागी होने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रिचार्ज काठमाडौँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शहरी बाढीको समस्या चुनौतीपूर्ण बन्दै। रुकुम पश्चिममा जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 9 जना घाइते। गम्भीर घाइतेको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत लगियो। इन्डोनेसियामा 240 जना यात्रु सवार जहाज जावा सागरबाट बेपत्ता, खोजी अभियान जारी। 148 किलोमिटर टाढा रहेको संकेत मिलेको जानकारी। र नेपालसँग आगामी वर्ष द्विपक्षीय क्रिकेट सिरिज खेल्न बङ्गलादेश सकारात्मक। नेपालको प्रस्तावप्रति बङ्गलादेश क्रिकेट बोर्ड बिसिबीको सकारात्मक प्रतिक्रिया। हवस् त, इमेज समाचार अहिलेलाई सकियो। इमेज समाचार तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagecover.com मा हेर्न सुन्न अनि पढ्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।

नमस्कार, म प्रदीप कुमार मैनाली। संगत विकमा शिवराज विश्वकर्माको स्वर मेरो शब्द मेरै संगीतमा राख्दैछु यो गीत।